नैन बैन पुर पुर गुरु सत्य कव नल कहे, गुरु सत्य कव नल कहे, जिन गुरु न देखियो न कियो।

बिन बाजे कैसो नृत्यकारी, बिन कंठे कैसे गावन हारी। जील बिना कैसे बजे रबाब, नाम बिना बिरथे सब काज। नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया। बिन जेवा कहा को बक्ता, बिन श्रवना कहा को सुनता। बिन नेत्रा कहा को देखे, नाम बिना नर कहीं न लेखे। बिन विद्या कहा को पंडित, बिन अमरे कैसे राजमंडित। बिन बूझे कहा मन ठहराना, नाम बिना सब जग बौराना। बिन बैराग कहाँ बैरागी, बिन हो त्याग कहाँ को त्यागी। बिन बस पंच कहाँ

गोविंद ना भजै अहं बुध माता जन्म जुए ज्यों हारे। नाम अमोला प्रीत नत स्यों पर निंदा हितकारे। छापर बांध सवारे तृण को द्वारे पावक जारे। कालर पोट उठावे मुंडे अमृत मन ते डारे। मोढ़े वस्त्र का

क्या कहिए, जैसे मस्त राम हो रहिए, जैसे मस्त राम हो रहिए, थोड़ा बोलन गुरमत पा,

गोबिंद हर जन राखे गुरु गोबिंद कंठ लाए अवगुण सब मेटे ध्यान गुरु।

समाप्ति है शासन पर मेरा चित करता है कि ए सत्रां ते तुहानूं समझ आ गई ज़ेहन विच बैठ गई हां तुसी कृपा करके हौली हौली इस दे नाल ही